0: रेडियो सुनो 91.7 FM
1: कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
2: Hi, I'm Sujaya Chichiana.
1: You're listening to
2: Radio Suno 91.7.

0: आजादी हो।
1: वो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।